उस्तै, धड़कन उस्तै, धरती उस्तै, आकाश उस्तै, चोट उस्तै, रगत उस्तै, आखिर मान्छे मान्छेमा किन

0: यसमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी 7-13 प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560-2279।
2: नाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो साइन्चेक अहिले दिउँसोको 1 बज्यो। टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98166 95301।
2: Gunrise, stand by. Reload music.
3: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

लुकी हानी हलुकी रति को गोली माया लुको डी और सुखी नहीं बोली मारे भूत कहे रति पास

के मरी गए म केही गरी सानो हुँदा सिक्या जवानी आउँदा बिर्सिए प्यारो छोरा थिए आवारा पनि निस्किए कता उस्तै सबैको फरक मात्र सोच मेरो नि गल्ती छ यो समाजको नि दोष।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइम अहिले रातिको 9 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो टाइटेट अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प स्टोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301